0: अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद दरबले जे टोल मना तरु जुल खुशाल ना ठीक ठाक सुकाल दि छन ब मजदूर प खंदुने कि बे अदिस रसुकुम जमंग आवाज होरी चरतो मोरी कम कम से कम असीम कम इलाका के हमोरी कागज जमंग शरान मिश्रान गटवाड़ो माशुमान या जमंग गुलाली गुलाली रुना या बिल्कुल जी जमंग न्यासबिनी न्यासबिनी खोंदे
1: مشکلات
0: بیماری والا چکم بیمارے بالکل روگی جوڑی کی

0: हसन हसन भाई अस्सलाम वालेकुम अगर जमानुम हसन देखा उस दरतवे मा अक्सर से गम डिर खलक हसन वइनु जमानुम हसन हसन दे दा हसाम दे आखिर कि नुन दे एम दे मीम दे मीम दे हसाम हसाम ठीक सुजी खीसिन अलिप मीम नो दे द जुड़शी खसाम
1: خیش داری و شور داری

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
4: फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले।
5: زسمیر د مصری بانډا محله حسن هیننا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالونو د کاسمیټکس کاروبار کوم په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلې چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی ده چې اچھا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده آباد

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ। इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।
3: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।

0: It's 1:30 PM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है, ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है, रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुनफ़े खून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

0: Anchor.fm.
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
2: Welcome to Radio Amal 88.4.
0: You are listening to Radio Amal Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
4: बहुत ही ज़्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वाश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वाश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वाश इस्तेमाल करें। ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और डीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर

जिसको मैं ऑनलाइन मंगवाती थी, मगर इसका रेट बहुत ही ज़्यादा हाई था। फिर मुझे किसी ने इश्मा राइस फेस वाश का मशवरा दिया। इसी वक्त से लेकर आज तक मैं इश्मा राइस फेस वाश इस्तेमाल कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि इश्मा राइस फेस वाश इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है और DI खान और मुख्तलिफ KPK के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल कर

दौलत है। तो जनाब हमेशा अल्लाह ताला का ढेर सारा शुक्र अदा किया करें, हमेशा ढेर सारा शुक्र अदा किया करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और जब शैतान को इबलीस को कहा कि इंसान का सजदा करो, ये बहुत अजीम मैंने मखलूक बनाई है, तो शैतान ने कहा था नहीं, मैं तो इसे सजदा नहीं करूंगा। यानी कि उसके अंदर क्या आया था, कंपैरिजन आया था, मवाजना आया था कि मैं आग से बना हुआ, ठीक है जनाब, और ये मिट्टी से बना हुआ। यानी कि सबसे पहला जो गुनाह हुआ वो मवाजना करने का था, उसने मवाजना किया था, उसने इनकार बाद में किया। उसके जहन के अंदर जो पहली चीज आई थी वो कंपैरिजन आया था कि यार ये अल्लाह ताला मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे किस मखलूक का सजदा करने को कह रहे हैं। वो जो मट्टी से बने खनखनाती मट्टी से बना हुआ, हमने आपको वाकया सुनाया था जब इंसान को अल्लाह ताला ने बना दिया था तो वो कुछ अरसे के लिए ऐसे ताबूत की सूरत में पड़ा था, अंदर से बिल्कुल खोखला, ये जो आंते हैं ये मैदा है ये गुर्दे हैं, कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह ताला ने एक फिजिकल अपीयरेंस बना के रखी थी। तो शैतान इंसान के मुंह से दाखिल होता था और दूसरी तरफ से निकल जाता था और कहता था क्या ही मखलूक बनाई है अल्लाह ने, ये तो बड़ा आसान है, मैं तो इसके आगे पीछे से अंदर से होकर आऊंगा और इसे गुमराह करूंगा। और जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि दफा हो जाओ जन्नत से निकल जाओ, तो मेरे बात को नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ तुम्हारा रब हूँ, तो तुम यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हारा कोई हक नहीं है जन्नत में रहने का। तो शैतान ने क्या कहा था, शैतान ने ये नहीं कहा था मैं इसे रोजे नहीं रखने दूंगा, शैतान ने ये नहीं कहा था कि मैं इनको नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, शैतान ने ये नहीं कहा था कि मैं इनसे झूठ बुलवाऊंगा, शैतान ने ये नहीं कहा था कि मैं इनसे धोखाबाजी करवाऊंगा। शैतान की जो पहला थ्रेट था जात को, अल्लाह ताला की जात को जो उसने किया था, उसने कहा मुझे तो निकाल रहे हो जन्नत से, लेकिन देखना मैं करता क्या हूं। अब दुश्मनी तो पल गई, अल्लाह ताला से दुश्मनी तो उसने मोल ली, तो कहता है क्या करूंगा। दुश्मन अक्सर जो है आपको धमकी भी देता है ना, जब दुश्मनी पर उतर आए तो कहते तू तू लंग के दिखावे, मैं तो कुछ ऐसा हूं है जनाब। तो शैतान ने क्या कहा था, शैतान ने कहा था कि देखना आप जो मखलूक पैदा कर रहे हो ना, इसमें सबसे ज्यादा लोग नाफरमान ना शुक्रे होंगे। ये नहीं कहा था कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं कहा था कि रोजे नहीं रखेंगे, ये नहीं कहा था कि कुरान नहीं पढ़ने का, नहीं, मेरे जो फोकस होगा ना वो में ये होगा कि मैं ना शुक्रा बनाऊंगा लोगों को। तो भाई देखिए आज पूरा दिन गुजर गया, 4 बज रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, क्या आपने एक दफा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है किसी भी लिहाज से, अपनी सेहत के हवाले से, अपनी नौकरी के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी जो है बगैर ऐब के आपको औलाद दी, आपको बीवी जैसी सुकून देने वाली बीवी अता की, क्या किसी भी हवाले से आपने आज के दिन में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया तो देखिए शैतान तो कामयाब है, शैतान तो आज भी कामयाब है कि वो हमें शुक्र नहीं करने देता, ठीक है जनाब। और वो जो पहली बात अल्लाह ताला को उसने कही थी ना, यही कहा था कि मैं न शुक्रा बनाऊंगा इनको, न शुक्रे होंगे ये, न शुक्रे। और न शुक्री इतनी बुरी चीज है कि जब आप नाशुक्री करते हैं तो आपके पास मौजूद चीजें भी चली जाती हैं। आप तजर्बा करके देख लें, अल्लाह ताला ने आपको रिस्क दिया 30,000-50,000 महीने के कमा रहे हैं और अचानक से आपके दिल के अंदर नाशुक्री आ जाए, वो रिस्क भी आपसे चला जाता है। नाशुक्री इतनी बुरी आदत है, इतना बुरा अमल है कि इससे लोग अपनी जिंदगियां तबाह कर देते हैं, लेकिन शैतान की इस चाल को नहीं समझते कि ये तो शैतान की चाल है भाई, है जी ना, नाशुक्री करना। तो अल्लाह ताला की हर रोज शुक्र गुजार बनना, थैंक्स टू गॉड बोलना, यार ये बहुत बड़ी आदत है। और जो इंसान भी सेहतमंद रहना चाहता है, दौलतमंद रहना चाहता है, हाँ जी पैसे वाला रहना चाहता है, हर रोज अपने रब की तारीफ करे। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इसी मामले को फरमाया है ना कि और तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हारा रब तुम्हें ज्यादा देगा, और अगर नहीं करोगे तो तुम करके आ सकते हो, है जनाब। अगर ना शुक्री करोगे तो हम अल्लाह का कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, परवरदिगार है दोनों जहां का मालिक है, ना दे कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या मौजूद है, हाँ जी शुक्र गुजारी का ऑप्शन है। मुझे कहते हैं खलील ताबे शमा, और इस वक्त आप डेरा इस्माइल खान ठाक और पहाड़पुर में केसन का प्रोग्राम सुन रहे हैं, केसन नेचुरल पाकिस्तान, वो कंपनी जिसने ठेका लिया है जनाब, कौन सा ठेका लिया है हाँ जनाब, हम कहते हैं कि हमारी कंपनी ने ही ठेका लिया हुआ है आप लोगों को ढेर सारा प्यारा बनाने का। और भाई शर्माने वरमाने की बात नहीं है, बिल्कुल भी मत शर्माया करें, क्योंकि प्यारा लगना तो आप

जी बिल्कुल, शिफा ही शिफा है केसन। और क्यों ही शिफा ही शिफा केसन है, क्योंकि जनाब कुदरत के अनमोल खजाने जो है वो हमारी दस्तरस में है।

जी जनाब, साथ साथ में चाय मेरी पहुंच चुकी है, तो जनाब थोड़ा सी ब्रेक आ जाती है पीने में, क्योंकि जनाब बहुत ज्यादा गर्म चाय भी नुकसानदेह होती है और बहुत ज्यादा ठंडी चाय भी नुकसानदेह होती है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर एक औरत को देखा और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने मेरा वो एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं कि हम बैठे थे तो चाय का कप जैसे आया तो उसने कहा बर्फ है घर में। हम भी मेहमान थे, वो भी मेहमान थी, तो घर वाले ने कहा जी बिल्कुल है, कहते थोड़ी सी बर्फ तो ले। तो आप यकीन की मैं हैरान हो गया, ये तो सुना था कि लोग जो है चाय के अंदर मूली डिबोकर खाते हैं, ये तो हमने मिस्टर जेडी को देखा था ड्रामों में कि चाय के अंदर वो मूली डिबोकर खाते थे, लेकिन पहली दफा देखा कि चाय के अंदर कोई बर्फ भी डालता है भाई। हाँ जी ना, चाय के अंदर बर्फ का उसने थोड़ा सा टुकड़ा डाला, तो मैंने कहा आंटी ये क्यों, तो कहते बेटा इससे चाय की जो तासीर गर्म होती है ना वो ठंडी हो जाती है। ये बिल्कुल, ये मेरे जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस था, क्या आपके सामने भी कभी ऐसा हुआ तो जरूर बताइएगा, लेकिन ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा और मैं हैरान हो गया ये चीज देखकर कि लोग गरम चाय के अंदर बर्फ भी डालते हैं।

0: जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, चाय खत्म हो गई मेरी और अभी आपके साथ खुल के बातें होंगी। केसन के बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है आप लोगों ने इस्तेमाल कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। और अगेन कहाँ है सोनिया, आप भी सुन रही हैं सोनिया वाला भी। आज फिर टांग वालों ने मेरा 2 किलो खून बढ़ा दिया, पता हो आपको है जी। अब जब मैं समझ, जब ये लफ्ज बोलूं तो समझ जाया करो कि भाई बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें टांग की तरफ से आ रही है और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं टांग वालों का भाई, जो हमारा शिफाय दर्द इतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी वेट कम फक्की को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह, हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप। और ये कल हमने एक स्टॉक भेजा था मंसूर जनरल स्टोर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं टांक वाले, उनको ये नई जो प्रोडक्ट हमारी आई है ताकत प्लस का एक ऑर्डर हमने इनको भेजा कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट आ गई है आप इसे। कल के दिन में टांक के इतने लोग उसे लेने के लिए गए हैं कल के दिन में, ठीक है जनाब। आज उसने फिर से ऑर्डर रिपीट किया, यानी कि तीनों इलाकों के अंदर डेरा टांग और पाड़पुर के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट हर जगह गई है वहां पर पहला ऑर्डर जो रिपीट हुआ है ना वो टांग वालों का हुआ है। टांग वाले एड्स अब यार मजा आ गया, कसम से मजा आ गया नई प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि एक स्टॉक हमारा गया और एक दिन के अंदर आपने इतना खरीदा कि डिस्ट्रीब्यूटर ने सुबह सुबह हमें मैसेज कर दिया भाई और भिजवा दे, वो तो खत्म हो गया। तो भाई बहुत शुक्रिया टांग वालों, और आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब आते जा रहे हो यार, बहुत करीब।
1: हर दिन खुशी से भरपूर
0: और मेरा खून हर रोज बढ़ा रहे हो कसम से। तेरे वालों ने कहीं कहीं जो मेरा खून जलाया हुआ है तो टांग वाले उसकी भरपाई कर रहे
1: हैं।
0: ये हमारी प्रोडक्ट है ताकत प्लस, बहुत ही ताकतवर फार्मूला हमने बनाया है भी कमजोर लोगों के लिए, जिनको जिस्मानी कमजोरी है, आसाबी कमजोरी है, ठीक है जनाब, पट्ठों में दर्द रहता है, जिस्म के अंदर दर्द रहता है जनाब कमजोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से, ठीक है जनाब, या फिर दिखने में पतले सूखे से हैं जी, तीली पहलवान लगते हैं आप। अब 3 महीने जो भी बंदा हमारे इस फार्मूले को रेगुलर इस्तेमाल करेगा, अच्छा जी हम आज आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर आपकी कमजोरी किसी बीमारी की वजह से नहीं है, बहुत सारे लोगों के अंदर जो कमजोरी होती है ना वो इंटरनली मसला ये होता है कि उसके अंदर कोई बीमारी चल रही है, खवातीन के अंदर भी ऐसा होता है, मर्दों के अंदर भी ऐसा। अगर किसी बीमारी की वजह से वो कमजोरी है तो उसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही गिजायत की वजह से, यानी कि गैर मुतवाजन गिजा खाने की वजह से या प्रॉपर खुराक ना खाने की वजह से आपकी कमजोरी है, तो हम आपको 3 महीने का टाइम देते हैं। जिस तरह हमने आपको ऑयल के बारे में कहा हुआ है कि मनी बैक गारंटी है भाई, इस्तेमाल शुदी बोतलें हमारे पास ले आइए अगर आपके बाल लंबे ना हो घने ना हो, इसी तरीके से हर चीज की गारंटी है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारी, क्योंकि ये 3 महीने आप खाएंगे तो आपका ढेर सारा खर्चा भी होना है, ठीक है जनाब, और 3 महीने अगर गुजर जाए और आपको कोई रिजल्ट ना मिले तो आप बोलेंगे भाई पैसे तो खलील भाई खा गया हमारे ऐसा है ना, और नहीं यार हम नहीं खाने वाले, खाने वाले होते तो आज हमारे पास 3-3, 4-4 गाड़ियां होती। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नेक नियती से आप लोगों के साथ बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो भाई बेफिक्र रहे आप, जो भी ये पूरा कोर्स करेगा 3 माह का, मैं स्पेशली अपनी बहनों से मुखातिब हूँ जिन बेचारियों के रिश्ते भी इस वजह से रुके होते हैं कि उनकी फिजिक नहीं होती खुद, ठीक है जनाब, फिजिकली जो है वो हेल्दी नहीं होती। तो आप 3 महीने रेगुलर इसको इस्तेमाल करें, ठीक है जनाब, अगर आपको फर्क ना लगे, आपका जिस्म के अंदर भराई ना हो, आपके गाल ना भरे, आपका जिस्म ना भरे, आपका जितना भी खर्चा हुआ होगा इस ट्रीटमेंट के ऊपर हम आपको वो वापस करेंगे। ऐसा कभी सुना है आपने? हम करते हैं, हम जब से हमारी कंपनी बनी है ना हम यही राग अलाप रहे हैं और कोई भी हमारे पास लेके नहीं आता, यकीन कीजिए कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमने हर चीज की मनी बैक गारंटी दी, हम ऑयल की मनी बैक गारंटी देते हैं, हम शिफाय दर्द का कहते हैं दर्द से आराम ना है वापस कर जाएं, हम फक्की का कहते हैं, हम हर चीज का कहते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए मेरे असिस्टेंट हैं तलहा किंग शॉप पर होते हैं, कभी आप उनसे पूछें कि भाई आपके पास रिटर्न आते हैं, कभी क्लेम आता है कोई, ठीक है ना, तो आपको बोलेगा कभी नहीं हुआ, कभी भी रेयर, कभी 1-2 चांस आ जाए वो भी ब्रिकेज लीकेज की वजह से या कोई और वजह से, अदरवाइज हमारे पास क्लेम नहीं आते कंपनी के। हालांकि हम हर प्रोग्राम में कहते हैं भाई मनी बैक गारंटी है, जो भी प्रोडक्ट हमारे रिजल्ट ना दे आपके पैसे अमानत हैं जब तक आप शिफायाब नहीं होते।

0: जी जनाब, ये हमारी नई प्रोडक्ट आई है जनाब, और ताकत प्लस के नाम से, केसन ताकत इसका नाम है, केसन ताकत प्लस, ठीक है जनाब। और प्लस का मतलब क्या होता है, ताकत ही लिख सकते थे केसन ताकत फार्मूला, लेकिन प्लस का मतलब है कि ये ताकत से बढ़कर कुछ आप लोगों के लिए है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियां शामिल हैं वो आपके बहुत सारी बीमारियों का भी खात्मा करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मैदे के मसाइल हैं उनको भी हल करेगा और आपको ताकत भी देगा। इसका आज मुझे कोई 3-4 कालें आई हैं, वो हमारा जो पहला बैच ये है उसके ऊपर लिखाई थोड़ी सी बारीक है, तो लोगों को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आ रहा, तो बार बार लोग कॉल करके पूछ रहे हैं किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके दो तरीके हैं इस्तेमाल के, ठीक है जनाब। अगर आपको ये खुराक, ये फार्मूला थोड़ा सा बोझ देता है, लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको लेता है तो फिर आप इसे 2 टाइम इस्तेमाल करें, यानी कि सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले 1 चम्मच आधे गिलास के अंदर डालकर पी लें, और फिर रात को खाने के आधे घंटे बाद सोने से आधा घंटा कबल जो है आधे गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच डालें। एक तरीका यह है कमजोर मैदे वालों के लिए, जिनका हाजमा कमजोर है, लेकिन जो ये समझते हैं कि फिट हैं भाई, हैं जी 3-3 गिलास दूध के हम तो पी जाएं, एक क्या है, तो फिर वो रात को सोते वक्त भी 1 गिलास के अंदर 2 चम्मच शामिल करके मिक्स करके हिलाकर आप इसे ले सकते हैं, या सुबह नाश्ते के वक्त काम पे जा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है। नाश्ते से कबल जो है 1 गिलास के अंदर 2 चम्मच ताकत प्लस फार्मूले के डालकर, ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है इसके अंदर, किसी किस्म का कोई स्टेरॉइड इसके अंदर नहीं है। मुकम्मल तौर पर एक गिजाई आप लोगों को हमने पैकेज दिया है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली हम बात करते हैं आपको जो फैट्स जो चाहिए होते हैं, जो आपके बॉडी को बनाते हैं, जो आपके जिस्म के ऊपर गोश्त लेकर आते हैं, ठीक है जनाब, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनिशियली हमने इसका छोटा पैक लॉन्च किया है, ये इतने का नहीं होता, हम आपको 500 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इसका बड़ा पैक हम लॉन्च करेंगे ताकि 3 महीने के अंदर सिर्फ 1 या 2 लगे और वो मुकम्मल आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा, और उसमें कुछ कंसेशन जितनी हो सकेगी हम करेंगे। तो ताकत प्लस के लिए भाई जो जो लोग निकले हैं पिछले 2 दिन के अंदर, हैट्स ऑफ,
1: नई जिंदगी का शुरू।
0: जी जनाब, केसन की ताकत प्लस फार्मूला, इसको केसन का ताकतवर प्रोडक्ट बनाएंगे मिलके जनाब, और मार्केट का नंबर 1 प्रोडक्ट बनाएंगे इसको इंशाल्लाह। हमने अपनी तरफ से इसके अंदर वो सब कुछ ऐड कर दिया है जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। अब आपने खरीदना है, इसको इस्तेमाल करना है, 500 रुपए का 1 जार मिलेगा आपको, 100 ग्राम इसके अंदर वजन है, ठीक है जनाब, 100 ग्राम के करीब इसका वजन होगा, और आपने 1 या 2 चम्मच डेली से इसको स्टार्ट करना है। बहुत ही अमेजिंग है, पहले दिन से ही आपको इसका असर जो है आपके बॉडी के अंदर नजर आएगा। सोचना आप डेरा टांग और पाटपुर में तमाम खरीदने वाले जो कि ताकत प्लस को खरीद रहे हैं, केसन के ताकत सप्लीमेंट को खरीद रहे हैं, ताकत प्लस को खरीद रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया, और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत ही सेहतमंद होंगे, और कमजोरी आपको आप खुद कहेंगे अलविदा अलविदा कमजोरी। जी बिल्कुल, ये प्रोडक्ट आपके जिस्म के अंदर जान डालने वाली है, नई जान है,
1: हर दिन जोश से भरपूर
0: कमजोरी को जो करे दूर जिस्म में आए नई जान,
1: जान।

जी जनाब, डाक वालों के लिए खुशखबरी है कि कल आपको जो है एक हमारे आरजे हैं, बहुत ही अच्छे आरजे, आरजे अनस जो है वो कल केसनपुर प्रेजेंट करेंगे टांक में। ठीक है जनाब, तो टांक वाले जुमा हफ्ता और इतवार तीन दिन जो है वो हमारे उस भाई को सुन पाएंगे आपके सिर्फ टांक के एफएम से। ठीक है जी, बाकी जो दो एफएम है डेरा इस्माइल खान एंड जो पहाड़पुर है उसमें बदस्तूर बदस्तूर खलील दाबे जवान आपको सुनने को मिलेंगे। तो टांक वाले भाई, जिन लोगों को पश्तो सुनने में मजा आता है कल और मजा लीजिएगा, पश्तो वर्जन केसन का आप सुन पाएंगे और देखते हैं कि हमारे वो आरजी आपको कितना कन्वेंस करते हैं।

जनाब बताकत से भरपूर जिंदगी अगर आप भी हासिल करना चाहते हैं तो भाई केसन नेचुरल पाकिस्तान को हाथ मिलेंगे, केसन का हाथ थामेंगे तो खूबसूरती भी बेपनाह मिलेगी और सेहत भी बेपनाह मिलेगी।

0: Naturals.
1: जी जनाब, केसर नेचुरल पाकिस्तान में हम अपने एक कॉलर को जो है इस वक्त वेलकम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खलील भाई, पखैर रागले।
1: पखैर रागले जनाब, क्या कहते हैं, एक और लफ्ज मैंने पश्तो का सीखा हुआ है वैसे।
2: भाई।
1: नहीं यार, एक मिनट ठहर जाओ
2: और सुनाओ।
1: नहीं और सुनो, नहीं चलो ठीक है, बोलो, अब याद आ जाएगा मुझे।
2: बराबर है खलील भाई।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ। आप सुनाए, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, हम दुआ करते हैं, कल तुम्हारा प्रोग्राम हमने अटेंड नहीं किया, मजा नहीं आया।
1: क्यों, कहाँ पर थे आप?
2: नंबर बिजी आई।
1: कहाँ पर, कहाँ अटक, कहाँ? बीवी ने पानी भरने भेजा हुआ था?
2: नहीं नहीं, टांक पे लंबर बिल्कुल काम नहीं करता।
1: अच्छा, कल टांक वाले लोग कॉलिंग कर रहे थे। ये मास्टर फतेहुल्लाह साहब को पता है आपको आजकल होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मैं तो उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ।
2: ओ तो ये वाला है ना, शेख उतार वाला है।
1: शेख उतार वाले किधर चले गए? एक शेख उतार से एक और बंदा भी कॉल करता था।
2: आप कहते हैं फतेहुल्लाह भाई, मास्टर भाई था, सुन स्पेशल कॉलो को खलील भाई था पर दे रहे।
1: डेरा मिस कड़े दी, मिस कड़े दी। हंसलो हंसलो मेरे पश्तों के ऊपर। अली भाई बात कर रहे हैं, नाम बताएंगे?
2: पश्तो बहुत मजा कर रहा है।
1: अच्छा जी, अली भाई हैं या सलीम है, मुझे ये बताएं, इन दोनों में से
2: एक बार।
1: अली भाई, अली भाई, अली भाई, माशाल्लाह जी। वो मैं कह रहा हूँ बंदा अगर आप बुढ़ा से, तो भाई अब हम कह रहे हैं कि कोई बुढ़ा बुढ़ा नहीं रहेगा, केसन ताकत प्लस फॉर्मूले से
2: सारे जवान रहेंगे,
1: सारे जवान होंगे। और मैं आपको बताऊं, आप पता नहीं आप गए हैं या नहीं गए, हमने एक दिन ये स्टॉक भेजा ताकत प्लस का, दूसरे दिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने फिर मंगवा लिया कि भाई सारे टांग के बूढ़े जो है ना वो जवान होना चाहते हैं।
2: बिल्कुल बेशक।
1: और पहले पता है क्या उन्होंने क्या कहा कि दो पैकेट जरबत खान के लिए भेजने हैं, उसे जवान होने का बड़ा शौक है।
2: बिल्कुल, जरबत खान अभी जवान हो गया।
1: जरबत खान को जाके पूछना भाई कितना ताकत प्लस तुमने खा लिया है किसन का, ये तो मुझे जवान लग रहे हो बिल्कुल।
2: बेशक,
1: गड़ा गरा बूढ़ा के लोगों को बोलो कि बहुत जल्द आपके गरे का नाम इंशाल्लाह गरा जवान होने वाला है, क्योंकि किसन का ताकत प्लस फॉर्मूला आ गया।
2: एक दिन जवान होएगा, मैं इधर अपना खुद दुकान खोलूंगा ना।
1: हाँ जी,
2: तो मैं सबका सामान आपका प्रोडक्ट रखूंगा और किसी वाला को रखूंगा।
1: आए है, क्या बात है, यानी केसन को मशहूर करोगे अपने इलाकों में। और ये यकीन करो, अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप अपने इलाके के लोगों को प्यारा बनाओगे, यकीन करो। आप दुकान का नाम रखना प्यारा लगने वाली, प्यारा बनाने वाली दुकान,
2: इंशाल्लाह प्यारा। बिल्कुल, ये दुकान पर पहले नाम लिखेंगे,
1: यही लिखना है जी। क्या नाम है भाई? अली भाई प्यारा बनाने वाले हैं जी, बड़ा बड़ा ऊपर लिखो, नीचे सारे केसन के प्रोडक्ट, क्योंकि केसन के जितने प्रोडक्ट हैं जी, केसन के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे आपको खूबसूरत बनाते हैं, ठीक है जी?
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: अली भाई बहुत शुक्रिया आपका।
2: अच्छा फतेहुल्लाह भाई को स्पेशल दुआ सलाम।
1: अच्छा जी ठीक है,
2: और अब्दुल्हादी को और सलीम कटी खेर को
1: और फैजान को भी,
2: और फैजान को भी जो तुम्हारा प्रोग्राम सुनते हैं सबको मेरे तरफ से सलाम है।
1: ठीक हो गया अली भाई, बहुत शुक्रिया जनाब। आगे जनाब अल्लाह हाफिज़। प्यारा लगना, हाँ जी, लग गरा बूढ़ा वाले
3: का हक है,
1: सब अब जवान होने वाले हो, क्योंकि जनाब केसन का ये जो फॉर्मूला, ये गप की बात नहीं है, ये आप इसको लाइट मूड पे मत लीजिएगा, लाइट मूड पे भी मत लीजिएगा, ये वाकई इतना प्यारा हमने फॉर्मूला बनाया है कि आपके जिस्म की सारी सुस्ती को निकाल के फेंक देगा, आपको चुस्त तो चलाक बना देगा। और एक दफा तो आप भी बोलेंगे कि मुझे काम बताओ। वो क्या कहता था जकूटा जी, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, है जी? ऐसी एनर्जी और ऐसा जोश लेके आएगा हमारा ये प्रोडक्ट जो ताकत प्लस हमने बनाया आप लोगों के लिए। कॉलर हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो हेलो, चाचा चाचा फतेह खान, चाचा क्यों हाल है, ठीक ठाक?
4: चाचा ठीक ठाक है, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो सब तू अच्छा है, मैं तो अल्लाह सीरा पियो, ये तो हर कंपनी की शायद ठीक है, मैं तो अल्लाह सीरा का भिक्का किसी ठीक है तो ठीक है, क्या आटा घटा हो गया।
1: हाँ जी अच्छा, तू साथ में सिर बस हाज में अल्लाह सीरा पीने वे, तू
4: साथ बिना हुआ यही।
1: अच्छा जी, बस ये तो
4: मेरे निकला थी ना, राजा कपूर रिस्क करके बैठे 5000 के बीच,
1: वो आता है कि भाई 10 किलोमीटर है टोटल, ठीक है जी। चाचा अगर
4: बारिश
1: बारिश तो माशाल्लाह हर पास थी नहीं पाई है जी,
4: ਬੜਾ ਰੰਗ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਫਸਲਾਂ ਕੋ ਬੜਾ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਛੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4: ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
1: ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ
4: ਬੱਲਾ ਬੱਲਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਹੋ ਵੀ
1: ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਕੋਲ ਚਾਚਾ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਕਿਸਨ ਕੋ? ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਵਧੇ ਨਾ ਕਿਸਨ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤਾਕਤ ਆਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤਾਕਤ ਪਲਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਵੇ ਸੀ ਯਾਰ।
4: ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸਾ ਜਮਾਏ ਇਸ ਕੰਮ ਕੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਤੇ ਮੱਥੇ ਲਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਜਾ ਕਪੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਗਿਆ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
4: ਸਮੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਤੇ, ਸਮੀਨਾ ਕੋ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਗਿਆ
1: ਪੰਜਾਬ
4: ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਰੂ ਕੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਨੂ ਨੇ ਸੇੜ ਕੋ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਗਿਆ ਸਾਜੀ ਅਮੀਰ ਕੋ।
1: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਅਮੀਰ ਕੋ ਵੀ ਸਲਾਮ।
0: ਕਿਸਨ ਲਵਲੀ
4: ਤਾਂ ਜੀ ਅਮੀਰ ਵੀ ਵਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਕਾਲਾ ਤਾਂ।
1: ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੋ ਹੋ ਕੇਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਸਨ ਕਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਕੇਸਨ।

0: जी जनाब, अब ये ट्रैक जो है ना जुल्फ और रुखसार की कहानी, मैं भी इसे कहूंगा कि भाई इसको चेंज करें आप। ये जुल्फ और रुखसार, जुल्फ तो कहते हैं बालों को, रुखसार कहते हैं चेहरे को, गालों को कहते हैं रुखसार, और जुल्फ कहते हैं बालों को। तो सेहत, ये कंपनी तो तीन चीजों की कहानी है, सेहत की कहानी है, शिफा की कहानी है, जुल्फ की कहानी है, रुखसार की कहानी है। हाँ जी, क्या क्या बोलेंगे इस कंपनी के हवाले से। एंड जिस इस जितने इस कंपनी के लोग प्यारे हैं, उतने इस कंपनी के प्रोडक्ट प्यारे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: जी, कौन है हमारे साथ? कौन है हमारे साथ?
1: मोहम्मद अली काम करो।
0: मोहम्मद अली?
1: जी जी, मोहम्मद।
0: अच्छा जी, माशाल्लाह, मोहम्मद अली टांग से हमारे साथ।
1: कुछ भी पेट वैसा भी है
0: क्या चीज भाई?
1: वो पक्की पक्की पक्की नहीं, दो डब्बे हमने खाए, उसने खाए सही है।
0: तो क्या आपको उसका इफेक्ट मिला? आपको नहीं आ रहा उससे ऐसा मजा नहीं मिल रहा?
1: नहीं, ना कम हो रहा है, ना हो रहा है।
0: ये बात बिल्कुल होगी, ये उस वक्त होगा। आप इस पक्की को छोड़ कर देखें ना, मेरी बात सुनिएगा अली भाई, ठीक है? आप इस पक्की को आज वजन करें और इस पक्की को छोड़ दें और एक महीने बाद वजन करें, आपका 4 से 5 किलो वजन ज्यादा होगा। मेरी बात सुने, आप इसको समझने की कोशिश करें। अब ये जो है ना, मेरी बात सुने ना, इसके दो मैकेनिज्म होते हैं। एक ये है कि आपका वजन का नाम बढ़ना, भाई मेरी बात सुनेंगे थोड़ी सी फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एक इस तरह होता है कि वजन का ना बढ़ना, रुक जाना, ये भी फक्की का कमाल है कि उसने आपका वजन बढ़ना रोक दिया है, ठीक है। दूसरा, वजन का कम होना, ये उससे और बढ़िया कमाल होता है कि उसने आपका वजन भी कम किया। लेकिन बात सुने मेरी ना, बात सुने, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई 5-6 कार्टन मंगा चुका है, इतने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें आपने मुझे, मैंने आपको कई दफा बताया है कि जब आप खाएंगे तो इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज भी शुरू करें और थोड़ी सी आपकी जो खुराक, पहले की खुराक है ना, उसको थोड़ा सा कम भी करें, ठीक है? मेरी बात सुन, अगर आप डेली की 4 रोटियां खा रहे हैं तो कम से कम 3 कर लें, ठीक है? और 20 मिनट की वॉक भी शुरू करें। एक इस तरीके से आप करेंगे तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि 1 महीने के अंदर आपका वजन भी कम होगा, आपका पेट भी अंदर जाएगा, ठीक है भाई? और इसको आप किस तरीके से खा रहे हैं पहले ये बताएं, तरीकाकार क्या है इसका, इसका क्या तरीकाकार है? ओके जनाब, भाई चले गए। तो भाई बता रहे थे कि मैंने 2 डब्बियां खा ली। तो भाई ऐसा बिल्कुल होता है कि जब आप ये खा लें तो आपका वजन रुक जाता है, यानी कि बढ़ता नहीं है। ऐसे जिस बंदे का वजन बढ़ रहा है ना, हर महीने उसका वजन बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, जब वो फक्की इस्तेमाल करते हैं तो उनका वजन रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन उसके साथ जब आप ऐसा करेंगे कि थोड़ी सी डाइट को कंट्रोल करेंगे और साथ में थोड़ी सी 10 से 15 मिनट की वॉक करेंगे, 100% आपका 5 से 7 किलो महीने का कम होगा। एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है जी हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना? अच्छा, बबू खेल इलाका है कोई?
1: बाबा खेल
0: किस साइड पर हो जाता है ये?
1: के साथ एक छोटा गांव है।
0: अच्छा जी, ये कुलाची की तरफ हो जाता है या जंडोले की तरफ या पेजू की तरफ?
1: जंडोला मंजई,
0: बिल्कुल है, मंजई का किला भी है वहाँ पर,
1: मंजे के पहाड़ के नीचे है।
0: अच्छा जी, वहाँ तक आवाज जा रही होती है टांक एफएम की?
1: बिल्कुल है।
0: अच्छा, तो आपके इलाके में ये प्रोडक्ट मिलते हैं सारे, केसन वगैरह के? अच्छा जी, भाई चले गए हैं, ये मंजई के इलाके से हैं और इन इलाकों को मैं बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ। पहले जब ये गुमलजाम डैम नहीं बना था तो ये मकीन का इलाका और यहाँ से वाना के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती थी यहाँ से चलती थी, और अभी तो ये गोमलजाम का बन गया। अच्छा, जो अली भाई थे जो इसके हवाले से बात कर रहे थे, आज मेरे ख्याल में कि टांग के अंदर हमारा 3rd या 4th कार्टन गया इस फक्की का, इसकी इतनी रिपीट है, लोग इसको इतना खरीद रहे हैं। लेकिन कब आपको फायदा होता है? जब आप इसके साथ, क्योंकि ये जो मोटापा है ना, ये एक बीमारी है। अब एक डॉक्टर आपके पास आप जाते हैं और डॉक्टर आपको बताता है कि भाई आपको शुगर है, ठीक है जनाब, और वो साथ आपको कहता है कि भाई ये दवाई शुगर की ले लो, वो दवाई तो शुगर की है लेकिन आपको साथ में वो परहेज भी बता रहा है कि भाई मीठी चीजें नहीं खानी आपने, आप मीठी चीजें भी खाएं और वो गोली भी खाएं, आपके ऊपर टक्का असर नहीं करेगी, आपकी शुगर वैसे की वैसे रहेगी। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर वो आपने कैसी मुझे दवाई लीक कर दी है शुगर की, मेरी तो शुगर कम नहीं हो रही, तो वो बोलेगा कि भाई परहेज कर रहे हो, आप बोलोगे नहीं मैं परहेज तो नहीं कर रहा हूँ। तो इलाज जो होता है ना, किसी भी बीमारी का इलाज है, वो परहेज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है जनाब, जब तक आप, ये मोटापा बीमारी है और इसके लिए जब तक आप प्रोडक्ट के साथ परहेज नहीं करते हैं आपको वैसा फायदा नहीं होता। जैसे कि ये बता रहा हूँ, अब जिस बंदे का वजन बढ़ रहा होता है, हर महीने 3-4 किलो उसका वजन बढ़ रहा होता है, लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, जब वो फक्की शुरू करते हैं तो उनका वजन रुक जाता है। इसका मतलब है कि फक्की अपना काम कर रही है भाई, वो जो 4-5 किलो आपका वजन इस महीने बढ़ना था ना, वो इस फक्की ने रोक दिया, नहीं बढ़ रहा। लेकिन अभी आपने इसको मजीद सपोर्ट करने के लिए क्या करना है कि आपने थोड़ी सी अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, आपने थोड़ी सी अपनी वर्जिश करनी है, तो फिर आपको हर महीने जो है 7 से 6 से 7 किलो बिल्कुल गारंटी के साथ। हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्ट हमारी ऐसी प्रोडक्ट है, वेट कम पेट कम, कि हर जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह इसके इतने रिपीट हैं, अभी तक ये 7 माह हो गए हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, और जहां जहां ये गई है हर महीने वहां से ऑर्डर आते हैं, हर महीने रिपीट ऑर्डर आता है। जैसे टांग के अंदर आप जरबत खान के पास जाके पता करें, उसे पूछें कि भाई ये फक्की कैसे चल रही है, तो वो आपको बोलेगा कि यार वाकई इसके तो बहुत ज्यादा है। तो भाई तब आपको रिजल्ट मिलेंगे वजन कम करने के लिए, कब मिलेंगे भाई, यहाँ डेरे सुल खान में एक डॉक्टर साहब हैं, उनका वीडियो एड चल रहा होता है वजन कम करने के हवाले से ना, तो वो कहते हैं कि 2 महीने के अंदर जो है 15 किलो वजन कम होगा। वो जो साथ में बता रहे होते हैं ना कि 15,000 रुपए आपका एक लगे, यानी कि वो 25,000 रुपए लेकर सिर्फ 15 किलो वजन का दावा करते हैं, यानी कि मैं 25,000 रुपए लूंगा, इतना ये होगा और 15 किलो वजन कम होगा। और भाई आपने तो सिर्फ 2 डबियां खाई 800 रुपए की, ठीक है, और उनसे पूछे जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर पैसे लेकर इतना वजन कम करते हैं, हम कहते हैं कि अगर आप परहेज के साथ और वॉक के साथ जो है अगर आप इस फक्की को इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनी तौर पर जैसे आपका वजन नहीं बढ़ रहा ना, कम भी ऐसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आपने इस फार्मूले को सपोर्ट करना है। और ये हर किसी के अंदर नहीं होता ऐसा, कुछ लोग परहेज नहीं भी करते, कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं भी करेंगे, उनका वजन कम हो रहा होता है, लेकिन जनाब लेकिन कुछ लोग जिनकी डाइट बहुत हैवी होती है, यानी कि आप लड़मून को नहीं छोड़ रहे हो, आप नमकीन गोश्त को नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन जनाब आप जो है काबली पुलाव को नहीं छोड़ रहे हो, आप ओझरी को नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर भाई दवाई का कसूर नहीं होता क्या? आपका वजन कम ना करे, डाइट को जरूर कंट्रोल करना होता है। केसन नेचुरल पाकिस्तान हो। जी जनाब, केसन के अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ की जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि शिफाए दर्द हमारा प्रोडक्ट आप लोगों के पास मौजूद है, एक अमेजिंग फार्मूला हमने आपको प्रोवाइड किया है, और इस फार्मूले की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमने आपको शुतुरमुर्ग के तेल से बना हुआ ये फार्मूला ऑयल दिया है, जो कि पुराने से पुराने जोड़ों का खात्मा करने के लिए बहुत ही मुफीद है। आपके शायद टांग के अंदर ये भी मौजूद है, और स्पेशली आजकल हम जो बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ वो है जनाब केसन के नई प्रोडक्ट, जिसका नाम है केसन ताकत प्लस। ठीक है जनाब, केसन ताकत प्लस और एनर्जी बूस्टर है, ये आपके जिस्म के अंदर एनर्जी पैदा करने वाला और जान डालने वाली ये प्रोडक्ट है। आप लोग मैसेज कर रहे हैं, हमारा नंबर 03444-936-3366 03444-936-3366 अदनान भाई हमें सुन रहे हैं, कहाँ से? अवान वाले नाला से सुन रहे हैं, अवान का जो इलाका है वहां पर। कहते हैं खलील भाई सबको मेरी तरफ से इस्लाम, और केसन का ताकत प्लस जो है इसकी कीमत क्या है? तो इनिशियली हमने इसका छोटा पैक लॉन्च किया है 500 रुपए का, ठीक है, लेकिन चूंकि इसकी खुराक जो है वो जिस्म को मुकम्मल तौर पर भरने के लिए और जिस्म को सेहतमंद बनाने के लिए वो ऑलमोस्ट जो है वो 3 माह है, तो इसके लिए हम बड़ा पैक भी बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसमें हम आपको बचत भी दे सकें, और आपको एक ही दफा या 3 माह में सिर्फ 2 दफा खरीदना पड़े। सलाम डियर खलील भाई, सलाम टू ऑल लिसनर्स, एमबी साहब, शिराज भाई, शबीर भाई, राजा गफूर, शाहजहां, मेंबर नूना सेठ हैं जी, इतने सारे लोगों को सलाम भेज रहे हैं। टांक वाले फैजान को कहते हैं कि स्पेशल सलाम, प्लीज लाला केसन हेयर कलर लॉन्च करें। बहुत जल्द योर लवर नजर हसन फ्राम कच्ची काट गया। ये बहुत बड़ी हमारे पास रिक्वेस्ट है लोगों की केसन हेयर कलर, तो वो भी इंशाल्लाह, डोंट वरी जी, डोंट वरी जी, इंशाल्लाह किसी न किसी दिन वो भी आपको आ जाएगा जरूर। आप लोग जो भी हमसे फरमाइश करते हैं हम उसको जरूर पूरा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को दुकानों का एड्रेस बताना बहुत जरूरी होता है। टांग के अंदर जनाब, टांग वालों की तो फिर से नोट कर लो, अरबाब के पास चले जाओ, अरबाब कॉस्मेटिक स्टोर, इमरान कॉस्मेटिक स्टोर, फैसल गिफ्ट सेंटर, दुबई जनरल स्टोर, अब्दुल्ला जनरल स्टोर, सिटी जनरल स्टोर एंड मंसूर जनरल स्टोर सदर प्लाजा के अंदर मौजूद है जनाब। ये सेटअप हमारा मंसूर जनरल स्टोर के नाम से, जहां पर केसन के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, और दुकानदार हजरात जो घरों के अंदर खवातीन प्रोडक्ट बेचती हैं बहुत ज़्यादा, वो भी यहां से हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, हमारी प्रोडक्ट आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं और आप तक पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमारा नंबर जो है इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा, 0344-936-3366। जी जनाब, एक दफा फिर से 03-44-936-3366 के ऊपर आप लोग SMS कॉल कर सकते हैं। डेर इस्माइल खान के अंदर भाई आप लोग ब्लेसिंग पीपल हैं, आप लोगों को केसन के प्रोडक्ट सबसे सस्ते जो मिलते हैं ना वो केसन शॉप के ऊपर मिलते हैं। केसन शॉप अकबर प्लाजा में है, और इंशाल्लाह अगले माह से एक दफा फिर से हम आप लोगों के लिए कूपन सिस्टम को एक्टिव करने वाले हैं। जिस तरह पहले कूपन सिस्टम हमारा होता था, एक दफा फिर से कूपन सिस्टम एक्टिव करेंगे, और उसमें हर महीने जो होते हैं जो इनामात होते हैं हमारी तरफ से, एक प्रोडक्ट के ऊपर एक कूपन देते हैं, और फिर हर महीने के एंड के ऊपर हम उसकी कुरंदाजी कर रहे होते हैं। तो वो इंशाल्लाह प्रॉपर सिस्टम बीच में थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन इंशाल्लाह अगस्त के महीने से एक दफा फिर से हम उसको शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। और एक कॉलर है हमारे साथ, उन्हें मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना?
2: जी मैं ज़ारा खान बोल रही हूँ, डीआई खान से।
0: अच्छा जी, ज़ारा ग्लोबल एफएम 91 को सुन रही हैं आप ज़ारा?
2: जी जी।
0: अच्छा जी, पहले से प्रोग्राम सुनते आ रही हैं या आज पहली दफा सुने आपने?
2: जी नहीं, पहले तो सुनते थे, तो फिर वो 91 का जो नंबर था ना पहले वाला, वहाँ पे कॉल कर रहे थे तो अटेंड नहीं हो रही थी ना, तो अभी आपने नंबर बताया तो अभी की है।
0: हाँ बिल्कुल, ये हमारा पर्सनल नंबर है, क्योंकि ये ग्लोबल एफएम 91 से प्रोग्राम नहीं किया जाता ना, ये केसन स्टूडियो से नशर किया जाता है, फिर सारे एफएम के ऊपर जा रहा होता है, तो हमारा अपना नंबर होता है। तो क्या कहेंगे, केसन को जानती हैं आप, इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं ज़ारा ने, या अभी तक सिर्फ सुन रही हैं प्रोग्राम?
2: जी नहीं, सुन रही हूँ, लेकिन बहुत बार आपकी नंबर मिलाने की कोशिश की तो नहीं हुआ, तो वो मेरी दादी है ना, वो ना तेल ऑयल का पूछ रही थी कि इसकी प्राइस कितनी है केसन की।
0: जी, केसन का जो हमारा पेन किलर ऑयल है उसकी कीमत है 700 रुपए, ठीक है जी, 700 का आपको मिलेगा केसन शॉप पर। आप डेरा में रहती हैं तो डायरेक्ट वहां पर आ जाएं, अकबर प्लाजा में हमारी शॉप है, वहां से आपको कंसेशन हो जाती है काफी सारी, लेकिन वैसे अगर आप कहीं से भी लेंगी, आप कौन से इलाके, कौन इलाका कौन सा आपका हो जाता है, मैं आपको एग्जैक्ट सेल पॉइंट भी बता देता हूँ, वहाँ से मिलेगा आपको।
2: कोटली इमाम हुसैन नहीं है?
0: कोटली इमाम हुसैन, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ चुंगी के साथ यहाँ पर कराची कॉस्मेटिक की दुकान है, कराची कॉस्मेटिक्स।
2: जी जी,
0: ठीक है ना, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आपको इजिली ये हमारे सारे प्रोडक्ट जितने भी है ना, ठीक है जनाब, चाहे ये ताकत प्लस फार्मूला है, शिफाए दर्द है, फक्की है, हाजमा कंट्रोल सिरप है, या ब्यूटी के जितने प्रोडक्ट है सारे आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है जी?
2: जी ओके, थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम जी, रज़ारा हमारे साथ थी डेर इस्माइल खान से, और ग्लोबल एफएम 91 को सुन रही हैं। और दादियों नानियों के लिए भाई ये जो प्रोडक्ट है हमारी, बहुत कमाल की प्रोडक्ट है, और दुआएं दिलवाने वाली ये प्रोडक्ट है। आप यकीन कीजिए कि पट्ठों का खिंचाव जो होता है ना, वो एकदम से आपका जिस्म नरम पड़ जाता है, और जैसे पट्ठों का खिंचाव खत्म करता है ना ये ऑयल, बेसिकली नेचुरली इसके अंदर जो है सोजिश को ख़त्म करने और दर्द से आराम देने वाले और पट्ठों के अंदर जान डालने वाले। तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि ऑयल मौजूद है हमारा, अपनी नानी को ताकत प्लस भी ऐड करवाएं हर रोज़ जो है उनको, दूध आप वैसे भी देते होंगे, बुजुर्ग हैं, आधे कप आधे गिलास के अंदर जो है आप 2 चम्मच 1 चम्मच ताकत प्लस का भी ऐड करके दें, सोने के ऊपर सुहागा होगा, बैरूनी तौर पर ऑयल काम करेगा और अंदरूनी तौर के ऊपर जो है ताकत मिलेगी, ताकत प्लस से। जी अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम खलील भाई।
0: जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताएंगे अपना?
3: बुटकुल गुलाम मोहम्मद, कह रहे प्रोग्राम सुन रहे बैठे सर।
0: बुटकुल सुन रहे बैठे हुए, बुटकुल
3: जी अबूटकर साहब।
0: अच्छा जी, पहाड़ केरा एफएम पर टांग का एफएम सुन दे पे उस से
3: टांग का लग दे थे तेरे खैर पहाड़ पूरी लग दे थे 91 लग दे थे 96।
0: अच्छा बहुत मजे दी जाते रंदे पे वैसे हैं जी। सारे प्रोग्राम को सुन दे तो के लगता है कि शे तुहाडे काम दी है या इवें बस गालियां सिर्फ मजा करन देन सारे हर कंपनी दे बारे पता हो सी ते हर कंपनी अपना प्रोग्राम अंदाज अपने अंदाज गिन के आंदी हर कंपनी अंदाज वाइज केसन किवें लगदी है सिर्फ मैं कोई दसो बहुत सारे कंपनियां दे प्रोग्राम चलदे हैं सारे प्रोग्राम को याद विच कितने नंबर दे सो मुख्तलिफ कंपनियां दे तुसा प्रोग्राम सुनदे पे होंदे
3: अच्छे प्रोग्राम हैं ते सारे ये सही हैं बड़े मजे भरे सही हैं साहब तो बहुत बीमार हैं साहब।
0: अच्छा बहुत सारे बीमार हैं ते बहुत सारे बीमार हैं मैं को तुसा दाद विच नंबर दो पहले दसो कितने नंबर दे सो साकू अच्छा चलो ठीक है मैं भाई गल पूछना चाहना तुम्हारे को चलो ठीक है तो तुमको क्या चीज जरूरत है सही कोई शायद जी तुमको लगता पे कि तुमको घिरनी चाहिए किसन ओ शैम्पू तो सारा सारा इन वक्त सारे को पूरा नहीं वेथिंदा मने सो तुसा हुन भी साकू जेरे जेरे लोगों ने त्रै त्रै डूडू काटन दा आर्डर दिते से सोनो को एक ही काटन दिता से सारे को शैम्पू दी प्रोडक्शन इतनी घट है कि गिनन वाले ज्यादा थी गए गिनन वाले सर ते डाढे थी गए ते असा कमजोर थी गए बिला बहुत शुक्रिया जनाब आपके पास बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है और कह रहे हैं कि आपका शैम्पू बहुत कमाल का है और यकीन कीजिए शैम्पू शैम्पू के तो क्या ही कहने हैं केसन का शैम्पू इस वक्त केसन का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा कमाऊ पुत्र जो केसन का है ना वो केसन शैम्पू है जो सबसे ज्यादा कमा के वो कहते हैं ना वो बेटा सबसे प्यारा होता है जो सबसे ज्यादा कमाता है तो आप यकीन कीजिए कि मेरा ये जो बेटा है ना शैम्पू केसन शैम्पू ये मेरा कमाऊ पुत्र बन गया कमाऊ पुत्र तो बहुत सारे राजा गफूर भी हमारा कमाऊ पुत्र है अस्सलाम वालेकुम कमा के देने दे ये जो पैसे भी जेंदे वे हर वेले इजी पैसा के वेले 20000 ते के वेले 15000 ते के वेले 10000 ते कमाऊ पुत्र ते तुसा भी सारे ना सही
3: ने गाले ने खाय अच्छी हो तो 15000 ते 20000 आंदा पिए ना।
0: हां बिल्कुल हाल तक तो सही है कम ती शायद तोरो पहुंची नहीं ताकत प्लस फार्मूला के संदा नासिर भाई को इंशाल्लाह ताकतवर 3 महीने दी असाओ को फोटो छिकेसु पहले ठीक है सही तो सब
3: के फोटो आवे ना के मेरी कुत्तियां लग दिया पे
0: कुत्तियां यकीन करो पहलवान लोग जेरे ना पहलवान लोग ते जेरे जिम करे ने ठीक है जी ना जिन्हां को बॉडी बनावण दा शौक होंदा है उको आखो के भई घीन वाइन ते इस्तेमाल कर तो बात अपने डोले बनदे देख किवें बनदे डोले मैं के सही है डोले बनावण वाली शय है तुहाडे पट्ठे बनावण वाली शय डोले जको आदे
3: तो बात खैर है बात इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जी बस ओंदे के सोदे ते देले नीचे नीचे अंदर जंगे नीचे
0: नहीं इंशाल्लाह जंगे
3: नहीं हमारे पे तो ढाई फोन है
0: जंगा में इंशाल्लाह मोटे तीसन उना दे ताकत केसन ताकत फार्मूला जेले इंशाल्लाह दूध भी शामिल करके पीसन ते जितने भी जी
3: लंदा ठाकुर ने तने हजारों नंबर दिते कर दिया था।
0: अच्छा ठीक कहंदे
3: चलो ठीक
0: है बस यानी कि 10 बटा 10 नंबर इन केसन कंपनी दे हां जी इसका हमने रट्टा लगाया हुआ है, आजकल दूसरा तीसरा दिन है। और मैं उन लोगों से कहूंगा भाई, जो लोग बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र 50, 55, 60, 70 से ऊपर है, ये दो प्रोडक्ट उनके लिए है, ठीक है जनाब। एक तो ताकत प्लस और दूसरा केसन शिफाय दर्द, ये दोनों जान आ जाएगी, यकीन कीजिए। मैं आपको कहता हूं कि पहले 5 दिन के अंदर ही ये ताकत प्लस फार्मूला इस्तेमाल करने से जान आने की हम गारंटी आपको देते हैं। और केज से हमारे साथ शबीर उस्ताद है, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या
0: हाल है सर? मैं तो सर ठीक ठाक ही वे चंगे वदे वे माशाल्लाह।
4: अल्लाह की मेहरबानी, आज का नंबर पुट के बैठे आ गए सारा गुलाम का देख के बूढ़ा ये सारा लिखनर सारे एफएम
0: बता। अच्छा माशाल्लाह, मेरे प्रोग्राम में पहली दफा है तो मैं इनको वेलकम सही ना कर सका, वाता अगली दफा फुलां दे हार मंगवे सु जेले घंटी करे सन सारे उता पतियां भी
4: सिंपल बंदे सारे कुल से आंदा रहंदा है नहीं कोआ काई में खलील जोर के प्रोग्राम में ना कैसा नहीं की इसी जरूर मैं के शिरकत करें इनका जो इंशाल्लाह शिरकत करें
0: माशाल्लाह। दावत है वदन दावत है
4: जोड़े से तौर तक मेहरबानी करे लेबर मारे बड़ी सहूलियत लेबर चो बीमार अलहमदुल्ला बड़ा सकून बन गए
0: मानसून ने ठंडा कर देते मौसम को ते खुशगवार मौसम खुशगवार मूड ते खुबा तो कम ही हुए तेजी नल थी ना जी मौसम चंगा थी वजह
4: तू कैसा अंदर प्रोग्राम हो टीवी नाल चाय मोहब्बत रखा अवलीन
0: तरजीह अखलाकियात तो मेरे ख्याल है कि इंसान दी पहली तरजीह होने चाहिए, ठीक है जी। बारे बाद मामलात बाद दे होंदे, बहुत मेहरबानी सी तुम्हारी मोहब्बत दा तुम्हारी
4: तो कंपनी जो रहे ना खास कर जरा कैसा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी। बहुत सारे लोगों ने कमजोरियां आ गए मोटापे दे गए लेकिन कमजोर लाकर बहुत लोगों ने को कैसा जो रहे ताकत प्लस जो रहे इंशाल्लाह जिन्हों सारे लोगों को मैं आता इंशाल्लाह अगर भी तो कोई प्रोडक्ट इस एज में कौन भी जो ना जिला हो घर के फायदा मिले थोड़े प्राइस से इसी प्राइस कौन ही तो इंशाल्लाह बिना लोगों को अवेयरनेस हो ताकि जरा वेट कम पेट कम शफा दर्द जो रहे हाजमा कंट्रोल बाकी जितने
0: प्रोडक्ट बनाने का मकसद आप लोगों की मोहब्बत है हमारे साथ और दिन ब दिन ये कंपनी आगे बढ़ रही है माशाल्लाह। अजर कहते हैं शैम्पू कितने का है भाई, शैम्पू मिल नहीं रहा और तुम कहते हो कोई शैम्पू कितने का है जी। इतने खरीदने वाले बन गए हैं कि भाई अब केसन शैम्पू लोगों को बहुत कम मिलता है और आप अभी कीमत पता करें 390 रुपए का हमारा शैम्पू है जी। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, मैं जारा खान बोल रही हूँ कि आपने जो बताया कराची कॉस्मेटिक्स वाला उनका नंबर है आपके पास?
0: चलो शो के बाद आपको सेंड कर देंगे, ठीक है जी। ओके जी, जारा को बिल्कुल जी नंबर सेंड करेंगे। कौन बैठा है भाई, जारा को इस नंबर के ऊपर जरूर सेंड करें कराची।

0: टिकटॉक से मैं मिशन हूँ, अच्छा है, अच्छा मिनशा हूँ या क्या लिखा हुआ है,
1: जिंदगी
0: लिखा हुआ है बारा। एनी हाउ जनाब, ये था हमारा आपका आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पहाड़पुर में भाई, अच्छा ये आखिर में कॉल्स करते हैं, टाइम नहीं होता हमारे पास। पहाड़पुर के अंदर हमारा ये ताकत प्लस फार्मूला जो है पहुंच चुका है अवेस जनरल स्टोर, जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल, इसके अलावा हैदर मेडिकल स्टोर के पास और जमील नियाजी के पास, उसके साथ हसीब जनरल स्टोर है। तो जनाब इन दुकानों के ऊपर जाइए और ताकत का खजाना लूट कर लाइए सिर्फ 500 रुपए। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Eighty-eight point.

0: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।
3: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
4: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल दे, अविलाजी सुनत अमल दे।
5: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली यो, ढेर गर्जिदली कड़ी दली यो।
4: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।

0: अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन आज़ाद, मैं हूँ आरजेद आसिर और आज मैं एक ऐसी जगह बैठा हूँ जहाँ पर आपको हर तरफ एक नाम दिखाई दे रहा है और वो है परमानेंट। जी हाँ, ये परमानेंट कॉस्मेटिक्स का ऑफिस है और मैं मौजूद हूँ परमानेंट कॉस्मेटिक्स के CEO मोहतरम जनाब क़ैस रहमान साहब के साथ। मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया और हम उनसे परमानेंट कॉस्मेटिक्स के हवाले से पूछेंगे, कुछ जानेंगे। कुछ सवाल आते हैं मेरे जहन में परमानेंट कॉस्मेटिक्स के हवाले से जो मैं आज क़ैस रहमान साहब से उनके ऑफिस में बैठकर ही पूछूंगा, और क्योंकि कॉस्मेटिक्स हर एक की ज़रूरत है, हर एक इस्तेमाल करता है और परमानेंट कॉस्मेटिक्स कहता है कि भाई ये वो प्रोडक्ट है जो आपको परमानेंट ब्यूटी देगा। बिल्कुल परमानेंट ब्यूटी के लिए परमानेंट कॉस्मेटिक्स। सर थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपने वक्त दिया। सवाल सर मैं करने लगा हूँ, सवाल ये है कि आपका जो ये शैम्पू है, शैम्पू से शुरुआत करेंगे, परमानेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये डैंड्रफ शैम्पू जो है किस उम्र के लोगों के लिए है और कितने परसेंट आप श्योरिटी दे रहे हैं कि ये डैंड्रफ को ख़त्म करेगा?
1: अस्सलाम वालेकुम तासीर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हेड ऑफिस विजिट करने का और वेलकम ऑन बोर्ड भी आपको कहते हैं। आप अब आज से या तकरीबन महीना हो गया होगा आप ऑन बोर्ड है हमारे साथ, ऑफिशियली आप टच हो गए हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए परमानेंट कॉस्मेटिक्स का, तो आपको मैं वेलकम भी करूंगा और इंशाल्लाह आपको ये एतमाद और इत्मीनान होगा कि जो हम प्रोडक्शन करते हैं या जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं A to Z जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट BSc केमिस्ट्री BSc बायोलॉजी फार्मासिस्ट की ज़ेर निगरानी तैयार होती है। हाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ISO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम तैयार करते हैं अपने प्रोडक्ट, क्वालिटी कंट्रोल होती है हमारी प्रोडक्ट्स की, हर कमर्शियल बेच की पहले टेस्टिंग होती है और मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस होता है और क्वालिटी कंट्रोल का एक प्रोसेस होता है, उससे गुजर के फिर हमारी कमर्शियल बेच बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे KPK में जितने भी KPK को ओन कर रहे कॉस्मेटिक्स कंपनियाँ उन सब में वाहिद परमानेंट कॉस्मेटिक्स है जो हमारे पास, जिनके पास कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, ISO सर्टिफिकेट है हमारे पास, हलाल सर्टिफिकेशन है हमारे साथ, GMP सर्टिफाइड है हमारी कंपनी और मिंगावरा स्वात में हमारी प्रोडक्शन यूनिट है, फैक्ट्री हमारी मिंगावरा में है और क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री को पूरे पाकिस्तान में KPK साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके आने का भी शुक्रिया, आपको एक आपका एक्सप्लोजर होगा यहाँ पे आके, आपने बहुत सी चीज़ें जो आप फोन पे करते थे और वो आप अभी बाई फेस आपने सारी चीज़ें देख लिए, आपने परख लिए, आपने प्रोडक्ट्स देख लिए, महीना हो गया होगा इंशाल्लाह आपको हमारे साथ काम करते हुए और इसमें आपको हमारी प्रोडक्ट की जो एफिकेसी है, जो रिजल्ट है, जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल है, जो हमारी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है, वो सब आपको पता चल चुका होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। और हम अपने जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उन सब का हम शुक्रगुजार भी है कि वो ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम वादा भी उनके साथ करते हैं कि कभी उनकी ट्रस्ट को, यानी कभी भी उसको वो नहीं करेंगे, डिसअपॉइंट अपने कस्टमर को नहीं करेंगे। शैम्पू के हवाले से आपने पूछा है तो डैंड्रफ एक्सपर्ट शैम्पू है हमारा, यानी डैंड्रफ का कम्प्लीटली वो खात्मा करेगा, 100% रिजल्ट देगा। आपको मैंने उसकी फार्मूलेशन भी बताया कि क्लेम्बाजोल है कितने परसेंट, सेलेसिलिक कितना परसेंट है, टी ट्री ऑयल कितना है और जो वो होता है बेस होता है शैम्पू का, तो वो है जो, यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि अक्सर ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है जो हमारे शैम्पू है ना, सेम यही फार्मूलेशन वो लोग 100 ml 900 rupees का भेज रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारा 200 ml 500 का है। और दूसरा मैं ये बोलूं कि ये 3 साल की उम्र से लेके ना 93 साल और 130 साल की उम्र तक का बंदा मेल फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बेहतरीन उसको आएगा। डैंड्रफ तो हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना होता है हमारे शैम्पू, इससे ज्यादा ना करे तो बेहतर होगा,
0: यानी जरूरत ही नहीं होगी,
1: जरूरत ही नहीं होगी। तो ये रेगुलर नहीं, डैंड्रफ एक्सपर्ट है फंगस के लिए और बहुत सी डिजीज जो बालों के होते हैं, बेहतरीन उसका रिजल्ट है इसमें और बड़ी बेहतरीन तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2011-2012 से हम कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में और लोगों का ट्रस्ट दिन ब दिन अल्लाह ताला हमें तरक्की दे रहे हैं, दिन ब दिन लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है और हमें भी काम करने में मजा आ रहा है क्योंकि हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक चीज मैं खुद घर में इस्तेमाल करता हूँ तासीर, तो अगर वो मैं आपको बोलूँ कि आप इस्तेमाल करो तो मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगा, बोल्डली आपको बोलूंगा, मुझे पता है एफिकेसी का, फार्मुलेशन का, रिजल्ट का। यानी पी एस क्यू सी ए के जो ऑफिशियल है वो हर 3 महीने बाद उसके डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर अचानक विजिट करते हैं हमारी लेबोरेटरी, हमारी फैक्ट्री पे, और वहां पे वो बेच टेस्टिंग जो हमारा एक वो होता है वो प्रोसेस वो देखते हैं, चेक करते हैं और अचानक आते हैं तो हमारी क्वालिटी वो इंश्योर करते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से लोगों का भी रिस्पांस मिल रहा है और दिन ब दिन काम भी बढ़ता जा रहा है।
0: अच्छा सर, 2012 से एक सिलसिला शुरू है, आज 2026 है और वो भी जुलाई का महीना, कुछ महीनों के बाद 2026 भी ख़त्म हो जाएगा। इतने अरसे में परमानेंट कॉस्मेटिक्स चल रहे हैं, तो सर ये इतना एतमाद या इतना अरसा लॉन्ग टर्म कैसे चल रहा है? मतलब हम देखते हैं कि इतना कोई प्रोडक्ट जो है इस तरह आते हैं और चले जाते
1: हैं। असल में इस बुनियादी वजह है ना, जब आपको एतमाद हो और आपका एक फ्यूचर प्लान हो और आपका एक गोल हो जो परमानेंट हो, तो आप उसके लिए ना जो एफर्ट करते हो वो आप लॉन्ग टर्म में आपकी सोच होती है, शॉर्ट टर्म में नहीं होती है। यानी अगर आप वो एक जिम्मेवारी है, ये एक प्रोडक्ट प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत बड़ा रिस्क भी होता है, बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होती है, और इंडस्ट्री में जो भी हो, जो इंडस्ट्री भी हो, उसमें आपका टिक जाना, आपका 10-15 साल 16 साल गुजार लेना, ये बजात खुद बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम क्वालिटी पे तवज्जो ना देते, हम मयार पे तवज्जो, कीमतों पे, पैकेजिंग पे, और हमें ये ना होता कि यार हमें आगे जाना है और अपना नाम बनाना है, अपने सूबे के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए, तो शायद हम ना टिकते। सिर्फ अगर अपनी खातिर हम करते ना तो ये काम कब का खत्म हो चुका होता, जिस तरह बहुत से लोगों का हो जाता है खत्म जल्दी। तो अगर हम टिके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या हम इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा नाम है और लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और हम दिन ब दिन आगे जा रहे हैं, तो बुनियादी वजह ये है कि एक चीज जब मैं बनाता हूँ ना तो मैं ये सोच के हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ। जब एक चीज मैं खुद यूज करूँ, अपने घर में यूज करूँ, उसके मुताबिक मैं वो फार्मुलेशन, यानी अगर हम इंग्रेडिएंट्स परचेज करते हैं केमिकल, तो वो हम ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। अगर हम ए ग्रेड केमिकल परचेज ना करें और हम लोकल मार्केट से सस्ते वाले इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स ले, तो लाजमी बात है हमारी क्वालिटी नहीं रहेगी, लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा और हम स्टे नहीं कर सकेंगे शेल्फ में। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। एक प्रोडक्ट हम अपने लिए बनाते हैं, लोगों के लिए नहीं बनाते। जब मैं अपने लिए एक चीज बनाऊंगा ना तो वो अच्छी चीज बनाऊंगा। तो लाजमी बात है जब आप यूज करोगे तो आप भी बोलोगे कि यार ये तो जबरदस्त इसका रिजल्ट है।
0: अच्छा सर, एक परफ्यूम मैंने वेबसाइट पे देखा, खायस्ता लाला,
1: जी हाँ,
0: वो सुनने में आ रहे हैं कस्टमर ये कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए।
1: जी हाँ, वो इस वजह से कि बहुत ज्यादा उसका डिमांड था, तो फिलहाल तो आउट ऑफ स्टॉक है, करीब इंशाल्लाह रिस्टोर होगा
0: दोबारा। अच्छा सर, सोशल मीडिया पर परमानेंट कॉस्मेटिक्स लोग देख रहे हैं, तो बाहर के जाहिर सी बात है सोशल मीडिया एक बड़ी दुनिया है, लोग ख्वाहिश कर रहे हैं कि उन तक जो पाकिस्तान से बाहर है उन तक भी परमानेंट कॉस्मेटिक्स पहुंचे, तो उसका कोई प्लान है सर इन फ्यूचर?
1: इंशाल्लाह सऊदी अरब में अवेलेबिलिटी होगी।
0: अच्छा,
1: इन फ्यूचर इंशाल्लाह वहाँ पे अवेलेबल होंगी सारी हमारी प्रोडक्ट। लिस्टिंग हम कर रहे हैं वन बाय वन, तो शैम्पू से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। इंशाल्लाह उसके बाद हम और भी हमारे जितने प्रोडक्ट है वो भी अवेलेबल होंगे, और इंशाल्लाह बहुत से प्लान है फ्यूचर में।
0: माशाल्लाह, ये वो प्रोडक्ट है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद ख़वातीन हज़रात ये इस्तेमाल किया जाएगा और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। ये कहा जा सकता है कि परमानेंट कॉस्मेटिक्स जो हैं वो लोकल ब्रांड बिल्कुल नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। थैंक यू सो मच सर।
1: थैंक यू तासीर, थैंक यू।
2: फॉर बाइंग एनी एंटी डैंड्रफ शैम्पू वॉच दिस, कि आपको पता है सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपके बालों से 100% डैंड्रफ रिमूव नहीं करते, बिकॉज दे डोंट टारगेट मेलेसीजिया। कुछ टाइम पहले आई हैड अ मेजर डैंड्रफ प्रॉब्लम, मैं बहुत परेशान हो गई थी, देन आई स्टार्टेड यूजिंग परमानेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इसके 4 वॉशेस के साथ ही मेरे बालों से सारा डैंड्रफ खत्म हो गया था, मेरा स्कैल्प बिल्कुल क्लियर हो गया था। इट हैज सैलिसिलिक एसिड जो कि आपके मेलेसीजिया को टारगेट करता है, आपके स्कैल्प को नरिश करता है और आपके स्कैल्प से सारा डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है। सो अगर आप कोई 100% डैंड्रफ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ट्राई परमानेंट एंटी डैंड्रफ शैम्पू. से गुड बाय टू डैंड्रफ एंड हेलो टू हेल्थियर हेयर.
3: دانی د انسان خیس ورکی دانی ختم شي خو داغونه تر کلونو پات شي. کچری تاسو د مخ د پمپلز یعنی د دانو نه تنگ یو تاسو وای چې یو وخت ګرمي دا د مخ وړواله دی او په مخ باندې سری سری نری نری یا غټي یا وینی والا یا پیپولا سکس مهم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نه ختمول غواړي ریموف کول غواړي نن ځان لراوړی پرمننت انټی اکنی پلس کلیئر کریم کم چې د تایمول ٹی ٹرائل سره تیاریږي کم چې ساسو د مخ دانی د 15 شپونه والا د ووش په دوران کې مکمل ختمي او ساسو مخ صفا خکول او خسته جوړي. پرمننت انټی اکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پښتونخوا کې په حرف کاسمیټکس میډیکل جنرل سټور کې ملاویږي او د انلاین ډیلیوري لپاره www.permanent.com.pk باندې وزټ وکړئ او انلاین آرډر کولی. که په 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړئ نو ځان لراوړئ پرمننت بیوټی کریم کم چې یو ارګینیک کریم دی. کم بچ د مخ تیر سره د سترګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوي د مخ صفایي او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننت بیوټی کریم.

0: ओके जी, कॉलर वो खुला रहा है। चलो मैसेज ना हम रागले दी, मैसेज ना बस शामिल हूँ। वही जी सॉरी भाई, कल मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। कॉलर रहा था सुबह मैसेज वाई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, से आप खैर सही है ठीक ठाक है? हेलो हेलो साढ़े आवाज दे पुपशोर रवान दे कचो दास आवाज दे राशि खबर वारवा। हेलो यार डिम डिम आवाज दे राजी दा पु आवाज दे दा का बिजली दा फ्यूज वाला दा आवाज दे रोर बिया कोशिश हो का दौरोर में खबर कवि खो आवाज न रसीर शाह। ओए सॉरी भाई, कल मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई क्योंकि मेरे अब्बू की तबीयत खराब थी। सॉरी भाई, मेरी तरफ से जोनिशा को सलाम। मैं रविश फ्राम टाकू। जोनिशा वाले से अर्दिश रंग दर्शदा उस तबीयत से दर्शदा। अस्सलाम वालेकुम। वो आस बच्चे गुजारा कहो सड़िया दा आवाज बंदी दी चुसली दी मोबाइल से कम दा चेहरे उबोता खाटे और गाड़ी चली दी खाटे दे टाक वाले दंदुना रागली दी अताक बार ऐशा दा खाटे और गाड़ी चली दी जका आवाज सफा ना नाओ जी और रोरी खबर कवा पपा ये सुन को जान बप पपा कहूं का खैर हो
1: बार दिन के बाद कोई इस्तेमाल कर दे सुन जब जरा करा
0: तो शायद इस्तेमाल करी दी परमानेंट वाल
1: शैंपू
0: अच्छा नो फायदा है तरबरा सा वाला हाँ आवाज लाड़ा पता नस्ता दामा मोबाइल डेर नवाज सिदाय कच अच्छा दा माशाल्लाह दोर डेर अच्छा से दला दा उस पद चिरे आ कवर बंदू बस पावर तक दा सिदा द्राजे सिर नो दा द्राजे छ सी बे पये जो छ दा मोबाइल और से वा छ दा शाह जी। आओ जी नो बल मैं से तराजू वही प तोरशपा दिदन तराशम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम
0: बिल्कुल भाई जान दिशेदा खोर में चूक था फरिया शाही ठीक ठाक है बिल्कुल देवरोर दगा कर गलत कर मावे दा मोबाइल में बेहद रस सिर से वो चीज पर मेज बांधे गेन और से जोड़ सला दा लगा दा स्पीकर एडी तसला
2: गर्मी
0: नाओ दाई सी सिले सड़प सड़प पुराजी कन बे दा मोबाइल में गजक सी उतर रही जी सारा वाच जी शाह फरिया नो सवाल जवाब दर जी फरिया
2: जी भाई
0: चु शायदा
2: करवाट का दा
0: करवाट का दा अच्छा आच रंगा
2: बेजा नवर तो रही कन बे जी बलवे बेसराई
0: हम
2: बे इस्तेमाल खत्म से बे
0: जवाब दे सही देदार था वो आया कोले बांधे दी चीर इस्त्री करे
2: दा
0: कालिप दे पस वजह उली दी
2: ना भाई पस वजह रे मैंने
0: दी दा बदरवाग
2: ना भाई मुझे इस्तेमाल करे दरोस मनो
0: इस्तेमाल करे शा बाय खुदेर अच्छा तकड़ा से जाए चलो जी डेरा
2: मेहरबानी
0: खबर दा खबर दा उस दगा अकबर आगा शिकम दकन अख्ता पता न लगे आ बुढ़ा सड़ा दा असे असे वाई असे माता वाई तासिर भाई एंड डकों चलो मुका दे शाशा ओ

अस्सलाम वालेकुम भाई जान सरंगे जी, वेलकम टू दी नो टेंशन शो। आपको स्पेशल सलाम, सबसे सर को सलाम शाजी अमर वत तेरे मनन से खुशहाल छे। नो टेंशन प्रोग्राम के अगले बरखे दे पाकिस्तानी फ्रॉम रिहान, आई लाइक नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान डी रे मनन से अनिला पुर खुशहाल छे।